वा याजिङखुकको संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृति आगुदु मिगचुङ्गु मन्त्री परिषद बैठक याको छिनाथ सार्वजनिक याना दिसे सरकारी प्रवक्ता नपाङ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल अनि जमती सेवा या झिङखुकको संशोधन नियमावली स्वीकृति यानागु जानकारी ब्यादिगु ख सरकार तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना लोवर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना व तादी खोला जलविद्युत आयोजना या त राष्ट्रिय गु लागा छेलेता स्वीकृत लल हानागुन मन्त्री पोखरेललाई जानकारी ब्यादिगु ख अध्ययना बैठक विशाल कुमार भण्डारिया नाय सुइसा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गुमा दुजया तदर्थ समिति निसोनेगु कोछिनागुन मन्त्री पोखरेललाई ध्यादिगु दुसा बैठक या कोछिना त सार्वजनिक याको झोले वेक्ल संचार कमिटी गुनेस लिसस प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मासा निसतेगु लिस बित सदन बोतिकाईगु जानकारी ब्यादिल अध्ययना मन्त्री पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग बजेट भ मोजिगु याना मागु बजेट विनियोजन यानागु शिक्षा लागा माघको बजेट फ्यानागु जानकारी नब्यादिगु ख नुहुमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पद भाला कघना दिगुदु सिंहदरबारे मन्त्रालय पद भाला कघना दिसिया वैक्ल आवाने सिंह सुन नेपाली मनोतेको अपमान यासा चरित्र हत्या यासा सुन न थुज्याको कुत यासा गृह मन्त्रालय थु विशेष संवेदनशील जुया जुईको धया दिल मन्त्री गुरुङ जेएनजी आन्दोलन पाँचपु दुगु झाँका फौजदारी अभियोग जुगु मुद्दा लिताका फैगु मफैगु विशेषण दुवालेगु याना सिफारिस नापाया प्रतिवेदन दुत बित विशेष कार्यदल निसोनेगु कोचिना दिगुदु अध्ययना वैक्लम विक्रम सम्बत 2058 जेठ 19 गते जुगु नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्ड या विशेष थ्यान झुगु अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन याना अझ उपदुवालेगु प्रक्रिया निजके गुण कोशिना दिगु दुसा गृह मन्त्रालय व सुरक्षा निकायसँग संवेदनशील सूच जोगु झाँका पित मबित सूक्ष्म निगरानी याना कारवाही या त सूक्ष्म निकायसँग सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम एसआइभीपी एसआइभीटी निसोनेगुन वैक्लन जानकारी ब्यादिल वैक्लन नेपाल प्रहरी कथन दुगु केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो या त अञ्च सेलाकेगु लिचो लाकेगु व आ प्रक्रिया सन्दुगु अनुसन्धान या त थथे न्योज्याके त उज बिगु ब्युरोके दुगु जघन्य आर्थिक सङ्गठनिक अपराध नपाया गम्भीर प्रकृति या मुद्दा अनुसन्धान या त ब्युरोसँग मुद्दा या प्रकृति कथन विशिष्टीकृत समूह निसोनेगुन कोसिना दिगुदु अध्ययना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापान हुमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ व विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन पद गोपनीयता या पाफया दिगु ख नुपी मन्त्री पी गुरुङ व पुन राष्ट्रपति कार्यालय मिग गोसागोको विशेष ज्याचुले राष्ट्रपति पौडेल नापा पाफया दिगु खसा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मेघय मन्त्री परिषद तव्याका गुरुङ याता गृह व पुन याता नवप्रवर्तन मन्त्री सह नियुक्त याना दिगु ख गृहमन्त्री गुरुङ गोर्खा एक सह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद जुया दिगु खसा नवप्रवर्तन मन्त्री पुन म्याग्दी सह निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद ख ज्याचुले उपराष्ट्रपति राम साय प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा सभामुख डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय सभा नाय नारायण प्रसाद दाहाल मन्त्री पिङ थिथि राजनैतिक दलया प्रमुख व प्रतिनिधि सांसद पिङ संवैधानिक निकाय प्रमुख पिङ नापा पिनेगु बोटी दुगु ख प्रतिपक्षी दल तेगु मड्डीको पङ्गया हुने मेघना प्रतिनिधि सभाया बैठक सुने मफुत प्रतिनिधि सभाया मेघया बैठक यहाँ साता प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी श्रम संस्कृति पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद पिसन्दना विरोधी या थुङ्कानी सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सत्ता पक्ष व विपक्षी दल नापा सहल ब्याका दि धुङ्ककुली सदन या ज्या न्याज्या के त सांसद पिन्सा इनापेना दिगु ख बैठक न्यासा त नेकपा एमाले सांसद क्षति थेवै राष्ट्रियता या न्यासँग मुख प्रतिनिधि सभा छगु यथासे जुई माग उदासे प्रधानमन्त्री बियादिगु नोचु मभिङकु तले सदन याके मभिगु धया दिल अथियाना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद महेन्द्र बहादुर साई संसदीय न्य बगु बजेट भन्सार दरिया विशेषण लुङ्गु न्यासँग सरकार लिस बि मागु धया दिल नेपाली कङ्ग्रेस या सांसद निष्कल राय प्रतिपक्ष दल पङ्गया हुने जक्क विरोध यानागु मजुसे राष्ट्रिय हित पक्ष थपिस दना
विरोधी नाचनी गुथेदिल अथेना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद खुसबु ओली ताइल निशेया सदन पङ्ग थथे चिकेत नेपाल न भारतीय सीमा

कोटिगु दु धैगु लाची नापाया सरकार पुष्टि या मागु बिच पङ्का दिगु दु छ बैठकी श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष नापा सांसद हर्कराज राय राष्ट्रहित अख संसदीय प्रधानमन्त्री नुवाना दिगु ख रेकर्ड सची कुसा चिके उमा आयन्दा आवनिसी थुजागु नोचु सुनान ब्युसा उजागु प्रस्ताव कथन सदन पास मया त इनापेना दिलसा प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक थौ झिन्छता इलेक्ट्रोनिकु गोसादु राष्ट्रिय सभा मेगा बैठकेना प्रतिपक्ष दलय सांसद पिसम पङ्गया हुने जेठ 28 गते बिहिबार छ त इजुया झिङ्यागु मिनेटे चोनिगु धका दिकगु दुसा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालना कार्यसूची छ बैठक नियोजाके त इनाप्याना दिगु जुसाना प्रतिपक्ष दलय सांसद पिनी गुपङ्ग न्याना चङ्गुली बैठक दिगु ख सांसद पिसा राष्ट्रिय अखण्डता संविधान सुरक्षा निकाय व जलाखला राष्ट्र नपाया विशेष लिचो लाकेको कथा या नोचु प्रधानमन्त्री साहम बिया दिगु दोपङ बिसे वो नोचु लिता कया सदने क घाता इनाप्याना दिगु दु सांसद पिसा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने न्यवया दिगु आर्थिक विधेयक सन् झिङखुगु पृष्ठ तहाकगु कर्या दर भाव हिलाबुला यागु व नेपाल राजपत्र व संसदीय प्रणाली सन् स्वपुदुगु भु वेबसाइट सन् चिका हान न्यबोगु विशेष सन् थुकियागु थुकिया त दुवाले त ओलिस बिता इनाफ याना दिगु ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा खर्च व्यवस्थापन व अन्तर निकाय समन्वय तलिचोलाके मागु ध्यादिगुदु आर्थिक दन 2082-83 सोकगु सोलाय समीक्षा व मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति अमिगो चङ्गु बैठके संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा वैगु आर्थिक दसम बजेट या तलिचोलाकेगु कथ छेलाबुला यासे थागु इले आज पुङकेगु ध्यादिल मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा आर्थिक दन 2082-83 सम्पूजीगत हो चालु खर्च या अनुपाते पी छगु फुटी शून्य न्यागु प्रतिशत दुगु नेथना दिसे खर्च प्रणाली सन् सुधार मागुली ब ब्यादिल संचार मन्त्री तिमल सिन्हा मन्त्रालय कथन घोषणा यागु ज्याझोया छिलाबुला स्वापु दुगु निकाय सन् ध्वाथुका भाला व समन्वय मागु व सरकारी कथ निकायसन थगु कार्य लागा दुने ज्या थाथुइकु कथम पुङके फुसा सरकारी कार्य सम्पादन लिचो लाइगु नेथना दिल बैठके राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य तथा सूचना तथा संचार मन्त्रालय कथया विभाग हो कार्यालय प्रमुख पिसन थगु कार्यालय योजना हो ज्याचो छेलाबुलाय विशेषण जानकारी बियादिगु ख ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ नापा विद्युत विकास विभाग सम्पिथङ्गु जलविद्युत आयोजना नापाया अनुमति पौतेगु आयागु अवस्था प्रगति हो लिचोलाको समीक्षा निस्वने त उच्चस्तरीय समिति मिग निसङ्गु समिति मिग प्रतिवेदन दुत बिगुदु समिति प्रतिवेदन ललहाना कया दिसे मन्त्री श्रेष्ठ थगु भाला कथ दुगेङ्क पुङ्क गु लि समिति दुजते त शुभ्या देशना दिसे प्रतिवेदने क घा गु सुझते गु कानुनी व प्राविधिक मूल्याङ्कन नापा थथ्य छेलाबुला यङ्के गु बचाउ ब्यादिल समिति अनुमति पौ प्रणाली स आपला नीतिगत कानुनी व संरचनागत सुधार मागुली सुझाव नापा प्रतिवेदन दुत बिगुदु मन्त्री परिषद या सचिव हलया शासकीय सुधार कार्य योजना बुधा 74 ख कथ विद्युत विकास विभागसँग जारी जुगु अनुमति पौतेगु आयागु अवस्था समीक्षा यायता वङ्गु चैत्र 19 गते उच्चस्तरीय समिति निसङ्गु ख ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय सहसचिव मोहन साक्या संयोजक जुगु उच्चस्तरीय समितिसँग डाक्टर दिवस कुमार दिवस बहादुर बस्न्यात निकुञ्ज भण्डारी शालिकराम भण्डारी हो जीवन राणा मगर पिँ दुज कथन चुनादिगु ख समितिसँग आतक पुङ्कगु अनुमति पौतेगु अवस्था व प्रगति विशेषसँग आफला अध्ययन अनुमति वितरण प्रक्रिया सन्दुगु नीतिगत प्राविधिक आर्थिक कानुनी कमजोरी त महसी कुसे पिङ्केगु नीति सुझाव नापा प्रतिवेदन मन्त्रालय दुत बिगु ख समिति विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए पुङ्के धुङ्कानी न ता इ तक निर्माण ज्या न्यज्याके मफुगु प्रवर्तक तेगु अनुमति पत्र विद्युत एन 2049 दफा 8 कथ खारिज प्रक्रिया न्यज्याके त सिफारिस याना तगुदु स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय झिन्छगु स्वास्थ्य संस्था तथा कारवाही यागु कोछिगुदु मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी
लासाया लिया कथन ललया मागु ढेबा मफुगु झिन्छगु स्वास्थ्य संस्था यता कार्बा यागु कोचिनागु जानकारी ब्यादिगु ख वेकया कथन वो संस्था सँग छगु करोड ने च्यागु लाग ने पेङ्गु दो ढेबा काया मागु कोचिगु दु मन्त्रालय स्वास्थ्य लागा सुशासन पारदर्शिता औ कानुन जवाबदेही त सुनिश्चित यागु आज नापा थोक कोचिना छेला बुला प्रक्रियासँग नेच्याकागु वेकलङ्कना दिल महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन क्याङ्गु विषय यता कखना दिस बकेउता ढेबा असुली प्रक्रिया नेच्याकागु मन्त्रालय यथापुदु थौ हलिनियङका सभ्यता दोथी सहल अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हनासङ्गुदु हलिनियङका लुवापु चुएकुए या भावना भलसा मधुको हात्या दोथी सभ्य सभ्यता व संस्कृति दोथी थथ या समझदारी हना व छपा जुया ज्याया गुतातु नाथो दिवस हनासङ्गु ख संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभा सन् 2024 जुन 7 एथो प्रस्ताव पारित यासे जुन 10 एथो दिवस अनिगु कोचिगु ख चिन प्रस्ताव यागु थो प्रस्ताव यता चेगु सिबे आपालन देश समर्थन यागु ख नेकपा एमाले नायक केपी शर्मा ओली पार्टी जासना पिम्पिन त छप जुया जनता दथ्यु नेता उच ब्यादिगु दु एमाले नोकु रामबहादुर थापा बाँदल नेतृत्व निर्वाचन समीक्षा पूर्व व पूर्व गठन जासना पुचलङको सागोको ज्याचुले नाय ओली थथे धैदिगु ख वेकलाम पार्टी संगठन सुदृढीकरण निर्वाचन समीक्षा व वैगु कार्य दिशा विशेषण थथगु खम्पङ्का दिगु ख नवलपरासी वर्तघाट सुस्ता पूर्व या विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका सिसेनी लागा मिग निनेसिया इले धाकु फस छिन्हेखा छे व निगु सा छे शङ्का बिगुदु जिल्ला प्रहरी ज्याको या प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काया कथन छे या पाली पुइकुगु व छे सीमा शङ्कगु ख छगु निगु छे पखा नापान दुनाओगु ख आपला तानो गुली बाँके या निगु स्थानीय तह सम्पूर्ण कुठी विदा बिगुदु नेपाल उपमहानगरपालिका ओ खजुरा गाउँपालिका संस्थागत सामुदायिक बनेको थिए विधा बिगुख नेपाल गन्चिया पी निगु सामुदायिक चे निगु संस्थागत सुई गुगु धार्मिक बनेको थिए जेठ 25 गते निसि 29 गते तक स्कुल विधा बिगु शिक्षा महाशाखा या उपसचिव गोर्खा बहादुर थापा दाइदी गुख खजुरा गाउँपालिका जेठ 31 गते तक विधा बिगुदु आदेश पिन्या बुख हर्मुजे अमेरिकी हेलिकप्टर या त कुर्के धुङ्का अमेरिका इरान या त हक्ना आक्रमण यागुदु अमेरिकी अधिकारी पिच ए पाचे हेलिकप्टर या इरानी ड्रोन कुर्क गुख हेलिकप्टर या निमा पाइलट या त अमेरिकी समुद्री ड्रोन उद्धार यागुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कारबाही आपाला बल्लागु धैदिगुदु थुके इरान अमेरिकी आक्रमण या त कोतले

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्र सँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। विगत किछु दिन सँ जारी प्रतिनिधि सभाक गतिरोध अन्त भेल अछि। सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष दल सभ बीच आई भेल छलफल पश्चात सदन के गतिरोध अन्त भेल अछि। प्रतिनिधि सभा में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल सदन में जवाब देबाक सहमति भेला पर सदन सुचारू भेल अछि। बैठक में श्रम संस्कृति पार्टी का अध्यक्ष हर्क राज राय, प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह सदन में देल गेल अभिव्यक्ति सुधार कैल जवाक कहत हम सब प्रधानमंत्री पद के जिम्मेवार बनेबाक लेल खोजल बतौलन। बैठक आकस्मिक समय में सांसद लोकन समसामयिक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद ज्ञानु पोखरियल मानव तस्करी में पढ़ कर भारत पहुँचाओल 453 युवा युवती नेपाल वापस भेल विषय में जानकारी करबैत मानव तस्कर के स्वरूप परिवर्तन भेल आ विभिन्न प्रलोभन में पढ़ कर मानव अंग बेच विखन में होत गेल कहत एहन कार्य रोकबाक लेल सरकारक ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद बालावती शर्मा नेपाली सेना में कार्यरत ईश्वरी भुजेलक अपन श्रीमान हत्या कैल विषय में सतत छानबीन कर दोषी के कड़ा से कड़ा सजा के व्यवस्था करबाक मांग कैलन। विभिन्न अस्पताल में कैंसर रोग कीमोथेरापी सहितक रोगी के लेल औषधि नहीं भेला से रोगी मार में पड़ रहा कहते समय में औषधिक व्यवस्था करबाक लेल सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रमुख सचेतक खुशबू ओली संसद में विषय उठाओल कारण स्वयं के जान मारबाक धमकी आयल विषय में सदन के ध्यान आकर्षण करौलन। ओ 90% सनातनी से बसवास कर कारण आधार पर स्वयं नेपाल सनातन राज्य हेबा कहकर संसद में विषय उठौला पर सुनियोजित रूप में स्वयं के अखन धरि जान मारबाक धमकी बलात्कार करबाक तथा आक्रमण करबाक सन धमकी सामाजिक संजाल से आबि रहल बतौलन। यही क्रम में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल प्रधानमंत्री बालन शाहक विवादित अभिव्यक्ति के विषय में प्रतिनिधि सभा में स्पष्टीकरण देत प्रधानमंत्री का अभिव्यक्ति दसगजा अतिक्रमण क्रॉस बॉर्डर ऑक्युपेशन से संबंधित रहल बतौलन। सभाक आजुक बैठक में सभामुख से समय ला परराष्ट्र मंत्री खनाल सीमा समस्या समाधानक लेल नेपाल इंडिया बाउंड्री वर्किंग ग्रुप आ अन्य संयंत्र मैपिंग काज करल बतौलन। परराष्ट्र मंत्री खनाल लिपुलेख लिम्पियाधुरा आ कालापानी सहितक क्षेत्र सब नेपालक अभिन्न भूभाग रहल आ विषय में सरकारक आधिकारिक धारणा अस्पष्ट रहल बतौलन। सीमा संबंधी समस्या के कूटनीतिक माध्यम आ ऐतिहासिक तथ्य तथा नक्शा के आधार पर समाधान करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल आ एहि के लिए भारत से निरंतर संवाद भ रहल जानकारी दलन। प्रधानमंत्री शाह 1816 के सुगोली संधि के संदर्भ में बेलायतक भूमिका संबंध में देल गेल अभिव्यक्ति संबंध में मंत्री खनाल नेपाल कोनो तेसर पक्षक मध्यस्थता खोजल नहीं भ तत्कालीन समयक थप संदर्भ सामग्री सभक लेल मात्र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताक नाम उल्लेख कैल प्रश्न कैलन। सीमा विवाद नेपाल आ भारतक द्विपक्षीय विषय भेल एहि के आपसी समझदारी में अंत कैल जेबाक सरकार अडिग रहल कहत मंत्री खनाल समस्या का समाधान कूटनीतिक संवाद आ वार्ताक माध्यम से कैल जेबाक बात बतौलन। मंत्री खनाल दसगजा क्षेत्रक अतिक्रमण आ सीमा स्तंभ सभक व्यवस्थापन के लेल प्राविधिक टोली सब सक्रिय रहल आ ज्वाइंट फील्ड सर्वे टीम विभिन्न स्थान में काज कर रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता भीष्मराज अंगदबे कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भेला कारणे एहि के फिरता अनबाक विषय में नेपाल सरकारक स्पष्ट धारणा अयबाक बात बतौलन। प्रतिनिधि सभा आजुक बैठक में प्रधानमंत्री बालन शाह एहि जेठ 17 गते संसद में प्रश्नोत्तर के क्रम में राखल धारणा संबंध में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल स्पष्ट कलाक बाद नेता अंगदबे नेपालक हड़पल गेल ओ भूमि फिरता अनबाक लेल कूटनीतिक पहल कैल जेबाक बात बतौलन। अंगदबे सरकार द्वारा कैल नीक काज में विपक्षी साथ रहबाक मुदा देशक भूमिका विषय में अस्पष्ट जवाब देवला प्रवृत्ति गलत भेल बतौलन। कांग्रेस राष्ट्र स्वाभिमान आ संकट के समय में पार्टीक लाभ आ हानि नहीं देकर देशक लेल हानि देख कर निर्णय करैत आयल असमान करैत एखन सरकारक सवाल में सेहो ई नीति लागू हेबाक स्पष्ट कैलन। नेकपा एमालेक संसदीय दलक नेता राम बहादुर थापा बादल नेपाल भारतक भूमि हड़पल प्रमाण नहीं रहल बात बतौलन। प्रतिनिधि सभा आजुक बैठक में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल वक्तव्य दिलक बाद नेपाल कोनो भारतीय भूमि
नहि हड़पल आ नहि अपना अधिग्रहण कयल यथार्थ के सत्ता प्रतिपक्ष नीकसँ मनन कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। पर राष्ट्रपतिक जवाबसँ हमसब संतुष्ट नहि रहल। राष्ट्रीयताक रक्षाक संघर्ष भिन्न तरीकासँ जारी रखबाक हुनक कथन अछि। नेता थापा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा एहन अभिव्यक्ति सुधार करबाक लेल अपन पार्टीक नेता निर्देशन दऽ सकबाक तथा सभामुख एहन अभिव्यक्ति संसदक अभिलेखसँ हटौला पर अत्याबोध हेबाक ओ बतौलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीक संसदीय दलक नेता ज्ञान बहादुर शाही सीमानाक विषयमे अति संवेदनशील भेलाक कारणे एहिमे सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष एक ठाममे उठबाक बात बतौलनि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठकमे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल वक्तव्य देलाक बाद समय लऽ सांसद शाही नेपाल भारतक भूभाग हड़पने अछि कहि कऽ अभिव्यक्ति सुधार कयल जेबाक मांग दोहरौलनि। सीमानामे रहल नेपाली सभ हरेक दिन देशक रक्षाक लेल लड़ि रहल दिस सदन गंभीरताक साथ लेल जेबाक बात बतौलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले संसद में बजट पेश होबा सँ पूर्व सूचना चुहावट व अनियमितता भेल कहि कऽ प्रचार में सत्ता नहि रहल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति के आजुक बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व व्यय के अनुमान बजट मुख्य व्यवस्था के संबंध में जवाब दैत ओ प्रस्तावित करक दर संबंध में सूचना चुहावट व जेठ 14 गते VYD गाड़ी आनल गेल कहि कऽ स्विंग ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल स्पष्ट कयलनि। मंत्री डॉक्टर वागले स्विंग विरुद्ध संगठित रूप में अफवाह फैला रहल जिक्र करैत बजट वक्तव्य में समावेश भेल एकाध बुदा आर्थिक विधेयक में छुटलाक कारणे संशोधन कयल स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री आ अर्थमंत्री के विवादित बनेबाक गलत मनसाय सँ तथ्य आ प्रमाण बिना अनावश्यक चर्चा कराओ लेल हुनक कथन छल। बैठक में समितिक सदस्य लीमा अधिकारी सदन में प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक और रूपांतरकारी बजट आयल कहित मंत्री वागले के जवाब सँ बहुतो विषय स्पष्ट भेल बतौलनि। समितिक सदस्य नरेंद्र कुमार करुण विगत में सरकारक पाला में किछ नहीं भेल कहिक भाष्य गलत भेल बात बतौलनि। मध्य प्रदेश सभाक सभामुख राम आशीष यादव के नेतृत्व में काल्हि भेल सर्वदलीय बैठक में भेल सहमति के आधार पर आई सँ प्रदेश सभाक बैठक सुचारू भेल अछि। सर्वदलीय सहमति के आधार पर मध्येश प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव बैठकक शुरू में संबोधित करैत विपक्षी दल से आयल शिकायत प्रति सरकारक ध्यानाकर्षण भेल बतौलनि। ओ अगला दिन में विपक्षी दल सब संग सहकार सह स्थित तथा समन्वय कऽ प्रदेश सरकार काज करबाक प्रतिबद्धता बैठक में व्यक्त कयलनि। मुख्यमंत्रीक संबोधन पश्चात प्रदेश सभाक बैठक में प्रदेश सरकारक अगला आर्थिक वर्षक लेल आनल गेल नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल शुरू भेल। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक नेता तथा पूर्व अर्थमंत्री संजय कुमार यादव प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम बहुत महत्वाकांक्षी भेल बतौलनि। ओ नीति तथा कार्यक्रम में संहिता सबलीकरण के लेल आनल जाय वाला विषय सब में मौन रहल कहित कार्यक्रम में प्रहरी तथा निजामती आइन के विषय में मौन रहल बतौलनि। मध्य प्रदेश सरकार ज्येष्ठ 15 गते नीति तथा कार्यक्रम आनल आ आनल गेलाक बावजूदो एक दिन छलफल भ अवरुद्ध भेल छल। नीति तथा कार्यक्रमक छलफल में विपक्षी दलक प्रदेश सभा सदस्यगण अवरुद्ध करैत आयल छल। संपत्ति छानबीन आयोग संपत्ति विवरण बुझेबाक अवधि अखार मसांदै थप कयलक अछि। संपत्ति विवरण बुझेबाक परिधि भीतर रहल पदाधिकारी सब स्वयं के संपत्ति संबंधी विवरण संकलन के क्रम में रहल आ समय अपूग भेल जनौलाक बाद अंतिम बेरक लेल विवरण बुझेबा सन एक मास अवधि थप कयल आयोगक अध्यक्ष राजेंद्र कुमार भंडारी जानकारी देलनि। जनजी आंदोलन के क्रम में कतेको कार्यालय में आगजनी करि कऽ विवरण असंकलन में कठिनाई भ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। संपत्ति संबंध में 60 से अधिक उजुरी प्राप्त भेल आयोग अध्यक्ष भंडारी जानकारी देलनि। निर्धक निष्फिक्री भ कऽ संपत्ति संबंधी प्रमाण राखि कऽ अपन विवरण पेश करबाक लेल आयोग आग्रह कयलक अछि। प्राप्त विवरण दर्ता के छानबीन के प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक आयोग तैयारी अछि। सार्वजनिक पद में रहल पद से सेवानिवृत्त भेल आ हटि चुकल व्यक्ति स्वयं अपन प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोग ईमेल मार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाबि सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्योंगयांग भ्रमण पश्चात उत्तर कोरिया आ चीन द्विपक्षीय संबंध के थप रणनीतिक आ दीर्घकालीन स्तर पर लऽ जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलक अछि। उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था KCNN के अनुसार दुनू देशक नेता सब संबंधक भाष्यक लेल आ भविष्यक लेल दूरगामी ढांचा तैयार करैत परंपरागत मित्रता के आओर सुदृढ़ बनेबाक सहमति जनौलनि अछि।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन सहित विश्व नेता सब संग बेजिंग में उच्च स्तरीय भेंटवार्ता सम्पन्न कैल बाद सी सोम दिन उत्तर कोरिया के दुर्लभ भ्रमण कैने छलथि। उत्तर कोरिया आ रूस बीच पिछला समय असाधारण रूप में निकट भेल संबंध के बीच भेल एहि भ्रमण के क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जोड़ कर देखल गेल अछि। KCN के अनुसार सी जिनपिंग आ किम जोंग दुनू देश बीचक संबंध के नया ऊंचाई में पहुंचबाक विषय में संतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। दुनू दिन भ्रमण के क्रम में दुनू पक्ष क्रांतिकारी मित्रता, राजनीतिक विश्वास और रणनीतिक सहकार के थप मजबूत बनेबाक दृढ़ता दोहरौलनि अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ लिभाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विपक्ष के अवरोध हटने के बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक सुचारू। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर सामान्य चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल भारत सीमा के विषय में दिए गए वक्तव्य पर प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल द्वारा स्पष्टीकरण। सीमा समस्या का समाधान कूटनीतिक संवाद और वार्ता के माध्यम से किया जाएगा, परराष्ट्र मंत्री खनाल का कथन। संपत्ति छानबीन आयोग द्वारा संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई गई, आसार मसांत तक। किसान सूचीकरण प्रणाली में देश भर के लगभग 25 लाख किसान जुड़े। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी दलों का अवरोध हटने के बाद प्रतिनिधि सभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान बजट पर सामान्य चर्चा शुरू हो गई है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने वक्तव्य के साथ संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने जानकारी दी कि राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान पर केवल सैद्धांतिक चर्चा होगी, जबकि मंत्रालयवार कार्यक्रमों और योजनाओं पर विनियोजन विधेयक के दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट पर हुई चर्चा में सत्तारूढ़ पक्ष में सांसदों ने कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था की समग्र समस्याओं का स्थायी समाधान करने वाला और दिशा देने वाला है। सांसदों ने कहा कि बजट ने पलायन, आयात और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास की ओर मोड़ने के लिए परिवर्तनकारी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सांसदों ने यह भी कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष का बजट न केवल अर्थव्यवस्था के व्यापक पुनर्संरचना की दिशा में आगे बढ़ा है, बल्कि सुशासन सुधार की गति को भी मजबूत करेगा और निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करेगा। वहीं विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि बजट में आम नागरिकों की समयानुकूल समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने बिजली उपभोग पर लगाए गए मूल्य वर्धित कर से बिजली की खपत घटने और बजट के लक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका जताते हुए कहा कि वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन किए बिना बजट प्रस्तुत किया गया। इससे पहले कार्यसूची पर प्रक्रिया आगे बढ़ने के दौरान श्रम संस्कृति पार्टी के सांसदों ने प्रतिनिधि सभा के बेल का घेराव कर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने उन्हें बोलने का समय नहीं दिया। बाद में सभामुख ने रोस्ट्रम के सामने विरोध कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह करते हुए उन्हें बोलने का समय दिया। इसके बाद श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हरकराज राय ने सदन को विधि और संविधान के अनुसार चलाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि तभी देश में स्थापित हो सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री शाह द्वारा सीमा संबंधी मुद्दे पर दिए गए बयान को गंभीर गलती बताते हुए इस विषय पर चर्चा के लिए सभामुख से रूलिंग देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शाह के बयान से सीमा क्षेत्र में समस्या और बढ़ी है तथा सीमा अतिक्रमण के मामलों की जांच और स्थिति का आकलन करने के लिए सेना को सीमा क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री शाह ने आज शाम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री शाह ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से विद्यमान संबंधों के प्रति उच्च सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह द्वारा नेपाल भारत सीमा संबंधी दिए गए बयान पर प्रतिनिधि सभा में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का बयान दश गज्जा अतिक्रमण और क्रॉस बॉर्डर कब्जे से संबंधित था। आज की बैठक में सभामुख से समय लेकर परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि सीमा समस्या के समाधान के लिए नेपाल इंडिया बाउंड्री वर्किंग ग्रुप और अन्य संयंत्रों द्वारा मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लिपुलेख, लिम्पिया अधूरा और कालापानी सहित क्षेत्र नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं और इस विषय पर सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट है। परराष्ट्र मंत्री ने यह भी कहा कि सीमा संबंधी मुद्दे को कूटनीतिक माध्यम में ऐतिहासिक तथ्य और मानचित्रों के आधार पर हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर भारत के साथ लगातार संवाद जारी है। प्रधानमंत्री शाह द्वारा सन 1816 की सुगौली संधि के संदर्भ में ब्रिटेन की भूमिका पर दिए गए बयान के बारे में मंत्री खनाल ने स्पष्ट किया कि नेपाल ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मांगी है, बल्कि उस समय के संदर्भ को समझने के लिए केवल हस्ताक्षरकर्ताओं का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद नेपाल और भारत का द्विपक्षीय विषय हो और इसे आपसी समझदारी से ही सुलझाया जाना चाहिए तथा सरकार इस पर अड़ीग है। परराष्ट्र मंत्री ने बताया कि दशगज्जा क्षेत्र में अतिक्रमण और सीमा स्तंभों के प्रबंधन के लिए तकनीकी टीमें सक्रिय हैं और ज्वाइंट फील्ड सर्वे टीम विभिन्न स्थानों पर काम कर रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि संसद में बजट पेश होने से पहले सूचना लीक होकर अनियमितता होने संबंधी प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है। प्रतिनिधि सभा की अर्थ समिति की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व और व्यय के अनुमान बजट के मुख्य प्रावधानों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन पर लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है। संपत्ति जांच आयोग ने संपत्ति विवरण जमा करने की समय सीमा आषाढ़ के अंत तक बढ़ा दी है। आयोग के दायरे में आने वाले पदाधिकारियों ने बताया है कि संपत्ति संबंधी विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया में है और समय पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अंतिम बार के लिए एक महीने की अवधि बढ़ाई गई है। ये जानकारी आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार भंडारी ने दी। जेएनजी आंदोलन के दौरान कुछ कार्यालयों में आगजनी होने के कारण विवरण संकलन में कठिनाई हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की किसान सूचीकरण प्रणाली में देश भर के लगभग 25 लाख किसान जुड़े हैं। किसानों को भूमि के विवरण और कृषि उत्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक सहूलियत और सुविधाएं देने के उद्देश्य से किसानों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। ये जानकारी कृषि सूचना केंद्र के अधिकारी संजीव पंडित ने दी। नेतृत्व मिलने के बाद नवगठित विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रबंधन मंत्रालय ने संस्थागत और नीतिगत कार्य शुरू कर दिया है। नेपाल सरकार के हालिया कार्य विभाजन के अनुसार पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय से विज्ञान तथा प्रविधि को हटाकर नवप्रवर्तन जोड़कर विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मंत्रालय की स्थापना की गई है। इस मंत्रालय में स्वतंत्र सांसद महावीर पून ने मंगलवार को मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। मंत्रालय की सचिव के रूप में इंजीनियरिंग सेवा की प्रमिला बज्राचार्य ने भी कुछ दिन पहले ही जिम्मेदारी संभाली है। वैदेशिक रोजगारी दिलाने के नाम पर आकर्षक वेतन का लालच देकर आम लोगों से 30 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की पुलिस टीम ने सिंधुपाल चौक के 29 वर्षीय सुमन शाही, रामेछाप के 47 वर्षीय वेद बहादुर सुनोवार, झापा के 45 वर्षीय अनिल अग्रवाल और तनहू के 37 वर्षीय विवेक अधिकारी को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कम से कम 12 वयस्कों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल है। इस गोलीबारी में 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन सभी को गोली लगी है। इनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ये घटना मंगलवार देर रात क्लीम लैंड की एक झुंगी बस्ती में हुई। हमलावरों की तलाश के लिए छानबीन जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के अवरोध हटने के बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक सुचारू, आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर सामान्य चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल भारत सीमा के विषय में दिए गए वक्तव्य पर प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल द्वारा स्पष्टीकरण। सीमा समस्या का समाधान कूटनीतिक संवाद और वार्ता के माध्यम से किया जाएगा, परराष्ट्र मंत्री खनाल का कथन। संपत्ति छानबीन आयोग द्वारा संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई गई, आसार मसान तक। किसान सूचीकरण प्रणाली में देश भर के लगभग 25 लाख किसान जुड़े और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 12 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
4: परदेशको सपना बोकेर निस्किँदा घर परिवारको आशा बाँधिएको हुन्छ, तर श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्दा दुर्घटना वा मृत्यु भयो भने न सहयोग पाइन्छ न बिमाको भर पर्न सकिन्छ।
5: श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जाउँ, परिवार सुरक्षित, भविष्य सुरक्षित।
4: वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय।
6: पैदल यात्रीले सदैव बाटो पार गर्दा जेब्रा क्रस, आकाशे पुल वा सुरक्षित स्थानबाट मात्रै बाटो पार गरौँ।
7: नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग।
8: कृषक माझ बिउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरको अनुरोध।
9: जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश भूभागमा सरदर भन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा धान खेती गर्ने कृषकहरूमा बिउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरको अनुरोध।
8: नेपालमा सूचित वा पञ्जीकृत भएका धानका जातहरू छनौट गर्नुहुन अनुरोध सहित
9: छोटो अवधिमा पाक्ने धानका जातहरू छनौट गर्नुहुन समेत आग्रह गर्दछौ।
8: सम्भव भएसम्म सुक्खा सहने जातहरू जस्तै सुक्खा श्रृङ्खलाका जातहरू तथा घैया 1, 2 र 3 र सुक्खा तथा डुबान दुवै सहने बहुगुणी 1, बहुगुणी 2 जातहरू प्रयोग गर्न हुन अनुरोध छ।
9: यसका साथै सुक्खाको प्रभाव कम गर्न धानको ब्याड राख्दा एकैपटक नराखी निश्चित दिनको अन्तरालमा राख्नु हुन, त्यस्तै बर्सातको पानी संकलन प्रविधि, छरुवा धान प्रविधिको अवलम्बन गर्नु हुन समेत अनुरोध छ।
8: बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवन तथा राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिको सचिवालय ललितपुर।
9: फोन नम्बर 5423159।
10: झण्डु आयुर्वेद।
11: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ।
10: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
11: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
10: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
11: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
12: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
13: नागरिक लगानी कोष।